Thank you.

Jesus. Here's how we hear from God.

पवन हारे गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लेख जानन लेख लेख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंद्रासन बैठे देवतया दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साच।

कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखा कियां वडियाईयां, तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिले नाही ठाक रहाईया, आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे भंडारा,

राख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चुकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए।

वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृपता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया

बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल

अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पहे जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तपै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत सासत जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर वरड़ै भई ले निवासा, पानी पावुक तिन है किया। पंकुज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेतस मूड़ मना,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावह, आप हाथ दय मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन कौ आज संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुमह शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कार बिसन प्रकाशा,

तो जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशानै घट घट के पट पट की जानै जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उच

कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत पूज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारो असिख संगरो दुष्ट जिते उठ

सब काला दुष्ट अरिष्ट तरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मो हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै ना।

ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤੇ ਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ।

सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै

पौड़ी, तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे, उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरे छड जाहे, पौ जल बिखम असगाहौ गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन

प्यारी साध संगत जी, आओ हुण सिमरन दे नाल जुड़िए। सारी संगत वाहेगुरु जी दे सिमरन नाल जुड़ो। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की

Why, good,

Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai.

Good.

Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai.

Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai.

Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai.

Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai.

इतनिया की बेनतियां प्रवान करनिया सिमन करदिया बाणी पढ़दिया विचारा करदिया अनेक भुलाईया हन सत्संग जी बख्शन योग हन बख्श लेना धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शन योग हन बख्श लेना जी पुचक माफ करना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

Oh.

नित नित जीवड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै सदाते कमण समार संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन सीसड़िया जो हो वै साहिब स्यो मेल घर घर हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से।

कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। बोला जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, देख बहादुर सिमरिया करनो निधावे ताए, सब थाई होना सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होना सहाय। दसां पातशाह की जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी। धन धन श्री गुरु नानक देव गोविंद रूप सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जुगो जुग अटल नाम बाणी के बहुत कल युग के जहाज शब्द अवतार कृपालु पिता जी। आप जाके चरण कमला पास अरदास बेनती जोधरी अरजोई। आप जा का कोटान कोट शुक्र लख लख धनवाद। अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जाने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दारे बख्श के समूह संतान निहाल किया है। इस वेले आप जा के हजूर कीर्तन सुहेले साहब जी के पाठ हुए। आप जी के सुखासन की सेवा हुई। बाणी का पाठ करद्या सुखासन की सेवा करद्या अनेक ही प्रकार दिया भुलां गलतियां हो गई होणगियां, जान बच्चे समझ के बख्श लेना। अगो वास्ते शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न की शुद्ध सेवा करन की मत बख्शनी। आप जी के भाणे अंदर चार पैर दिन सुख नाल बतीत हो, रात्रियां भाणे अंदर सुख नाल बतीत कराउणा, अमृत वेले का जागना बख्शना, नित नेम दियां दातां बख्शनियां। इस वेले आप जी के पावन सुखासन साहब तैयार हैं। आप जी अपने आसन से विश्राम करो। समूह संतान छुट्टियां बख्शो। अमृत वेले फिर दर्शन दितारे बख्शना। आखरवाद घाट पड़िया पुल चुक माफ करना। सरबत दे काज रास करने। सही संत प्यारे मिलने, जिना मिला तेरा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

मोहन लाल ना। जप मन गोविंद एकै, अवर नहीं को लेखै। संत लाग मन है छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया।

है मरिया नजरिया, कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया पर को हिरिया।

अब साधु संग परिया हर द्वारा खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरिया मोहन लाल ना, जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेख है, संत लाग मन है छाड़, दुबधा की कुरिया। यह शब्द धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 746 ते 747 ते सुभायमान है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है। सतनाम सूही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मह पाओ राख ले हो, एह बिकही जियो,

छोड़ जाए जो सगल को फिर लपटाओ करहो कृपा करुणापते

प्रभु कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभु सिमरत कछ बिघन ना लागै, प्रभु कै सिमरन अंदन जागै, प्रभु कै सिमरन भउ ना व्यापै, प्रभु कै सिमरन

प्रभु के स्मरण तृष्णा बुझ है, प्रभु के स्मरण सब किच सुझ है, प्रभु के स्मरण नाही जम त्रासा, प्रभु के स्मरण पूर्ण आसा, प्रभु के स्मरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माहे समाय, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेहमो ताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै

प्रभ को सिमरै तिन सद बलहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सूख बिहावे, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभ कै सिमरन कभू न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन

कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय, हर सिमरन भय सिज्जति दाते, हर सिमरन नीच चहुकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमर

नाम जपत तब परै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहीं।

हर हर जन कै ऊट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रकट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जात एहु हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग बड़ भागी पाइए, संत की सेवा नाम ते आइए। नाम तोल कश अवर ना होए, नानक

कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीवै महा उदास तपीसर थीवै अग्न माहे होमत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावै तौ भी हमै मैल न जावै हर के नाम संसर कछ नाहीं।

मुँह न बिखिया टरै, जल धोवै बहुधे अनीत, सुध कहाँ होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच, बहुत स्याणप जमका पहु व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै, कि एक अनेक अगर नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिझै, छूटस नाही ऊब प्याल, मोहे व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै, गोबिंद भजन बिन दिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए,

हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभराते तुमरी उस्तत तुम ते हुए नानक अवरना जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम किरिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मैं उदम भला हर का नाम जपू जी सदा सगल बाणी मैं अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे

राष्ट्रपति रमैया के गुणचेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तुल साज सवार सी गारिया गर्भ अगन मैं जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ को दैन एह निर्गुण गुण कशु न बुझै बख्श लियो तो नानक सीझै जय प्रसाद घर ऊपर सुख बसै सुत प्रात मीत बंता संग हसै जय प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग सा।

त्याग कौड़ी संग रचै, साज छोड़ झूड़ संग मचै, जो छड़ना सो स्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर्दभ प्रीत पसम संग होए।

निष्कय तो समझै पूरा, कहां बिसनपद गावै गुंग। जतन करै तो भी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर भवन। नहीं होत ऊआ उस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै। नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाई सोयावै न चीत। जो बैराई तासु प्रीत, बलुआ के ग्रह पीतर बसै।

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक बस्त कारण बिखोट गवावै, एक भी न दे दस भी हिरले, तो मूड़ा कहो कहा करे, जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको की जय सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सूखता हूँ मन बूठा, जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सा अपनी दे रास, खात पीत बरत आनंद उल्लास, अपनी अमान कछ बहुत साले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुत उसका विश्वास न होवे, जिसकी बस्त तिस आज्ञा राख है, प्रभ की आज्ञा मन है मत है, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया स्यों रंग लावै, ओ बिनसे ओ मन पछतावै, जो दिसे सो चालन हार, लपट रहो तह अंधे अंधार, बटाओ स्यो जो लावै ने, ताको हाथ न आवै के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या धन

मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रो मोह अपमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या स्वर्ण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना पूजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को धावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बात बास लेत विकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन

मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाय, गोबिंद भजन बिन बिथे

रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु परबीन, बाहर पीख न काहू पीन, अवर उपदेसे आप न करे, आवत जावत जनमै मरे, अवर उपदेसे आप न करे, आवत जावत जनमै मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उंजन चरण पराता, करो बेनती पार भ्रम सब जाने, अपना किया आपे माने, आप है आप, आप करत निबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस पावै तिस

नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लाभे तिसको सिमरत परम गत पावहि। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर समरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्यागत अवर लुभावै। जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जस गा बीजै। जे प्रसाद तुझ सबको मानै मुख ताको जस रसन बखानै। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगै मान पावै नानक पत सेती कर जावै। जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिब लाभ तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छेत्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचै। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आभूखन पहरी जै मन ते सिमरत को क्यों आलस की जै। जे प्रसाद अश्व हस्त असवारी मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत सह त्याई। तिसे त्याए जो एक लखै इहां उहां नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करहै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी।

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्ब को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक जो बसदा को खोद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जो पावक का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस

सदा सज्जागत ब्रह्मज्ञानी अम्बुद्ध त्यागत ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता ब्रह्मज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभु आप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए

ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय द्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीए का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी

जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जून न आवै, वेद प्राण स्मृत बुझै मूल, सुखम मैं जानै स्थूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सा संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पस प्रेत मुगत पाथर को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाव, काहू जुगत कितै न पाइए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम।

जैसा हर्क तैसा उसोग, सदा अनंत है नहीं बेयोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाव, जित जित कर राखै तैसा तिन नाव। आपे करन करावन जोग, प्रभ पावै सोई खुन होग। पसर्यो आप होए अंतरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहि निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारा वार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमे उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब का विचारे। कई कोट नवतन नाम त्यावे, नानक करते के करते का अंत न पावे। कई कोट पे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अब आत्म निकोर। कई कोट पर दर्व को हिरा, कई कोट पर दुख ना कर है। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश प्रमाहे। जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जान करता रचना। कई कोट सिर जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससियर सूर निखात्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छात्र। सगल समग्री अपने सूत तार है, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तार है। कई कोट राजस तामस साकत, कई कोट वेद प्राण स्मृत अरसासत। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवै, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवै। कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूगर मृगाच। सब ते नीरै सब हूं ते दूर, नानक आप अल्पत रहा भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। कई कोट जन्मै जीवै मरहै, कई कोट बहु जोनी फिरै। कई कोट बैठक ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत। जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किज प्रभ के हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ अविनाश। कई कोट मांगै सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड। कई कोट हुए अवतार, कई जुगत कीनो विस्थार। कई बार पसर्यो पासार, सदा सदा एक एकंकार। कई कोट कीने भपांत, प्रभते हुए प्रभ माहे समात। ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत के बेते, सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवै, अमर पहे सद सद ही जीवै। कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सह।

रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नहीं इस हाथ करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई पुन थियो कभू ऊंच नीच मह बसै कभू सोग हरक संग रंग हसै कभू सोग हरक रंग हसै कभू निंद चिंद व्योहार कभू ऊब आकाश पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कभू नृत करै बहु भांत कभू सोए रह दिन रात कभू महाक्रोध बिकराल कभू सर्व की होत रवाल कभू हुए बह बड़ राजा कभू पेखारी नीच का साजा कभू अब कीर्त में आवे कभू पला पला कहावे जो प्रभ राखे तिभी रह गुर प्रसाद नानक सच कह कभू हुए पंडित करे बखियान कभू मोन धारी लावे ध्यान कभू तट तीर्थ स्नान कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कभू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनक जोन पर मैं पर मिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभ पावे तवे नचावे जो तिस पावे सोई हुए नानक दूजा अवर न कोए कभू साध संगत ए पावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंतन नाम रते इक रंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग जो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए बिसराम नानक प्रभ कै सद कुरबान। सलोक

गर्भगली अष्टपदी, जिसके अंतर राज अपमान सो नरक पाती होवत समान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टाता जंत। आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजोन परमावे। तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे। तनवंता हुए कर गरबावे तृण समान कर संग न जावे। बहु लस्कर मान ऊपर करे आस पर पीतर ताका हुए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए पसमांत। किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान सो जन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करे हों तारे श्रम पावे सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे कहु कैसे गवे। आपस को जो पला कहावे तसे पला ही निकट न आवे। सर्व की रेन जा का मन होए कहु नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए तब इसको सुख ना ही कोए। जब ए जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचल ना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हों छूटे। सहस कटे लको उठतावे त्रिपत न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिख्या के करे न त्रिपतावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़पागी किसे प्राप्त होए। करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन करने हार इसके हाथ कहां बीचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए। जो किच कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग। बुझे देखे करे विवेक आपे एक आपे।

सत्सव कीना, कूट मदे किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कड़कड़ सुनी श्रवण बख्याणी। पवित्र पवित्र।

तिस बिन नाही तेरा किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूप वंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सो है, तन मनता होए क्या को गर्भ, जा सब किछ तिसका दिया दरबै, अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे, जे को होए बह दातार, तिस देवन हार जाने गावार, जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग, जो मंदर को था मैं था मन, क्यों गुर का शब्द मने अस्थमन, ज्यो पाखाड़ नाव चढ़ तरे, प्राणी गोर चरण लगत निस्तरे, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास, ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे, ज्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, तिन संतन की बाछो दूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिल लाइये, पूरब लिखे का लिखिया पाइये, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तुत सचितार, जो किच करे सोई सुखमान, पूला काय प्रय अजान, कौन बस आई तेरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पद से ती कर जाहे, जिस वक्त पर कोलैन तू आया, राम नाम संतन गर पाया।

सबर त्याग भिखिया जंजाल, तान तान कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए, वपार विरला वापारे, नानक ता कह सद बलहारे। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड पागी पाइये, साध संग हर की तन गाइये, अनक बिगन जे साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे, ओट गई संते दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवाल नहार, भूखे को देवत आधा आधार, सर्व निदान जा की दृष्टि माए, पूरब लिखे का लहना पाए, सब किच तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हो आना हो, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ए करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय को होए, सच करनी सच ता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष्टा चा आकार, सच वर्त साचा पासार, पार ब्रह्म

जिस हो वह सो प्रसन्न। अष्टपदी अबनासी प्रभ मन मै राग, मानु की तू प्रीत त्याग, तिस्ते परे नाही किछ होए, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा नदयान दयाल बखसंद, साथ तेरे की चरनी पाओ, नानक के मन एहो अनराओ, मनसा पूरन सरना जो, जो कर पाया सोई हो। हरन परंता का नेत्र फोर, किसका मंत्र न जाने होर, आनंद रूप मंगल सतजा के, सर्व थोक सुनिए करता के, राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपी सरग्रस्त में भोगी, त्याय त्याय भगते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया, ताकि लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अगवा अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पुत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान दिंदे, जन दास नाम त्यावे से, तें गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नाना जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना बेक करह एक रंग, नाना बिद कीनो विस्तार, प्रभ अवनासी एक अंकार, नाना चलत करे खिनमाए, पूर रहो पूरन सब ठाए, नाना बिद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नानक हर गुण हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनत ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया अर पवन, नाम के संग उदरे सुनश्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जा का सत स्थान, पुरुख सत केवल प्रदान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माय समानी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, निसे बुझाए तिसे सब पली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर दे प्रवेश, सत नृत बूझे जे कोय, नाम जपत तां की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जाकी दृश्यो करने हार, जिसकी दृश्यो करने हार, अवर ना बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझिया तिन आया स्वाद, प्रभ के रंग राज जन रहे, गुर के बचन पदार्थ लय, ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरह संसार, जन का सेवक सोवड पागी, जन के संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे है, गुर प्रसाद नानक फल पावे, श्लोक आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक हो सी पी सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत ध्यावन हार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बूजन हार को सत सब कोय, नानक सत सत प्रभ सोय, सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करण करावन तिल मूर पछान्या, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान जिस मन प्रगटाया, पहते निरपो होए बसाना, जिसते उपजया तिस माए समाना, बस्त माए ले बस्त गडाई, ताको पिन न कहना जाई, बूझै बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ के सेवक नाम कै रंग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारे, नानक सो सेवक साथ साथ सुमारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई,
अपने सेवक की आपत राखे ताकि गतमित कोई न लाखे। प्रभ के सेवक को कहु न पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दे दिस्पट आया। नीकी की रीमै कर राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे। जिसका सास न काट तहा ताको राखत देकर हाथ। मानस जतन करत बो पात तिस्ते करतब वृथ जात। मारे ना राखे वरना कोय सब्जियां का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलक विडाणी। बारंबार बार पब जपिए पी अमृत ए मन तंत्र पिए। नाम रतंजन गुरमुख पाया तिस किच अवर नाही दिष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नामे नाम सुमाने। उठत बैठत सोवत नाम कहु नानक जन के सदकाम। बोलो जस जेबा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात। करे भगत आत्म के चाये प्रभ अपने स्यों रह समाये। जो हुआ हुआ सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक ना जानो। आठ पहर प्रभ बसे हजूरे को नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे। अवस्यानक सबली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होई तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सत पुरख जिन जाने आ सतगुर तिसका ना हो। तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को कुरसदा दयाल। सिख की गोर दुर्मत मल हिरै गुरबचनी हर नाम उतरे। सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे। सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारे नानक सतगुर सिख को जी ना समारे। गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत हुए नह कामे तिसको होत परापत स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का जाता वाट पैर पा ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एके आप नाई कच परम। सहस्यान अपलया ना जाइए नानक ऐसा गुरबट भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे। सुनकर बचन करन अगाने मन संतो का खनपतिया ने। पूरा गुर आख्यों जाका मंत अमृत दृष्ट पे के होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसले मिलाए। जेबा एक उसत अनेक सत पुरख पूरन विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वय सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई। अनेक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे। सत बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। हर रस पाव एहो हर रस पावे जन कोए। अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का ना ही कदे विनाश जाके मन प्रकट एकदम गास। आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग ना ले मन में राखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगा से नानक परम मोह दूप तैना से। तपत माए ठान बरताई अनंत भया दुख नाटे पाई। जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूरन उपदेशे। पहु चुका निर्भव हो बसे सकल ब्याद मनते खै नसे। जिसका सातिस कृपा तारी सात संग जप नाम मुरारी। थित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जस सवन। निर्गुण आप सरगुण भी ओई कलातार जिन सगली मोई। अपने चरित प्रभाव बनाए नान अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रकाश साथ के संग। रच रचना अपनी कलतारी अनेक बार नानक बलहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार।
हर हर नाम कमावना, नानक एव तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपास मीत विसारो, चरण कमल हृदय में उतारो। करण कारण सो प्रभ समृत, दृढ़ कर गो नाम हरवत। हे तन संचो हो भगवंत, संजना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माए, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस तन को चार कुंट उठतावे, सो तन सर हवाते पावे। जिस सुख को नित बाचे मी, सो सुख साधु संग पजी। जिस शोभा को करे पली, करनी सासो पा हर पद की सरनी। अनेक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जब नानक दरगह परमान। मन पर बोधो हर के नाए, दय दिस तावत वा बैठाए। ताको बिगन न लागे कोई, जाकर जय बसे हर सोए। कलता तीथा डा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण होए आज, भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसे अबनासी, को नानक कांटी जम फांसी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सुखा चौकाचा। आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग सन गुरुदेव। यो रतन जन्म का हुए उदार, हर हर सिमरन प्राण आधार। अनेक पाप न छूटन हारे, सिमर शास्त्र बे विचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बंछन दानक फल पाए। संगना चालस तेरे तना, तू क्या लपटा वह मूर्ख मना। सुत मीत कुटुंब रबंता, इनते कहो हो तुम कवन सुनाता। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो हो कवन छुटकार। अस्त हस्ती रथ सवारी, झूठा टांफ चूट पासारी। जिंदी ए तिस बुझे न बिगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना वो डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माए, जन्म जन्म के किलविक जाए। आप जपो अवरह नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सार पूत सत हर को नाओ, सह सुवाय नानक गुन गाओ। गुन गावत तेरी उतर समैल, बिनस जाय हो मैं भिक फैल। होए अचित पथ सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। चार स्या नकप सगली मना, सा संग पावे सच तना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, यहाँ सुख दरगह जयकार। सर्व निरंतर एको दे, कहो नक जान कहो नानक जाके मस्तक ले। एको जप एको सालाए, एक समर एको मन आहे। एक कस के गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर्यो प्रभ्य आप। अनेक विस्तार एक ते पय, एक राध पराछत गए। मंतन अंतर एक प्रभ जाता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया, परया तो सरनाई। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। जाचक जन जाचे प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार, ब्रह्म मेरी सदा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गाओ, सास सास प्रभ तुम्हें त्याओ। चरण सम कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नितनीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभसार। प्रभ की दृष्ट मां सुख होए, हरस पावे बिरला कोय। जिन चा कैसे जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरुख नहीं डोला ने। सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ चात के संग। परे शरणान सब त्याग, अंतर प्रगास अंधन लेव लाग। वड़पागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई, सदगुर ते निर्मल मत लई। जनको प्रभ होयो दया, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुकत जन पया, जन्म मरण दुख प्रम गया। इच पुरी सरदा सब पूरी, इच पुनी सरदा सब पूरी। रव रया सत्संग हजूरी, जिसका साथिन लिया मिलाए। नानक भक्ति नाम समाये, शोकों बिसरे जय काल न बाने। शोकों बिसरे जय किया जाने, शोको बिसरे जिन सब कुछ दिया। शोको बिसरे जे जीवन जिया, शोको बिसरे जे अगन में राखे। गुरुप्रसाद को बिरला लाखे, शोको बिसरे जे बिकते काडे। जन्म जन्म का टूटा गाडे, गुरपुरे तत ए बुझाया। प्रभ अपना नानक जनते आया। साजन संत करो एक काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाओ, आप जपो अवरह नाम जपाओ। भगत पाए तरिय संसार, बिन भक्ति तन होती सार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस रचाओ, मंतन अंतर ये सुहाओ। नेत्रो पे दर सुख होए, वटपागी किसे वत। नेत्रो देश नेत्रो पेख दर
सुख होए मन बिकसे साथ चरंत होए। भगत जना कह मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्ती जय करमया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं ना जाए नानक रहा सर्व समाई प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा पूरन प्रतपाल आद पुरख कारण करतार प्रगत जना के प्राण आधार जो जो जपै जो हुए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुकत मोक पाए एक निमक हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई पौ भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत सा संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार एक अचना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समा तब बैर विरोध के ससंग कमात जब इसका बार न चिन्ह जापत तब हरक शोको किसे ब्यापत जब आपन आप पापम तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आवतीजा नानक कर न हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत को किसको घनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव सकत कहो हो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तरे तब कवन निडर कवन कर डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अबनासी सुखापन आसन तय जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र कुपत चिस पूकत लेका जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही उचर जा नानक आपन रूप आप ही उचर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन महल कहो क्या तोता जय निरंजन रंका निर्बान तय कौन को मान कौन अपमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय है चाल छिद्र लगत को कीस जय ज्योत रूपी जो संग समावैत सहत्या तह किसै पूक मंत्रावै करण करावन करने हार नानक करते का नहीं सुमार जब अपनी शोभा अपन संग जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कौन माय बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला आपे प्रवीण तय भेद कतेब कहाँ को चीन जब आपन आप उतारे तो सगन अब सगन कहाँ बिचारे जय आपन ऊच आपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्मय बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अचेत अपे समाया उहां किसे व्यापत माया आपस को अपे अदेश तय गुण का ना ही प्रवेश जय एक है एक एक भगवंता तह कौन अचित किसला गए चिंता जय आपन आप पतियारा तय कौन कथा है कौन सुनने हारा बहु बेच ऊंचे ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय आप रचियो प्रपंच आकार तय गुण में कीनो दुस्तार पाप पुनते पही कावत कौ नरको सुरख पंचावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह पर हम पे पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखयान आपन खेल आप कर दे केस खेल संकोचे तो नानक एके जय अवगत भगत तय आप जय पसरै पासार संत प्रताप दोहूं पाका आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनचोग आपे रस ओ गण निर्जोग जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार अता अगंत अतो लै ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोलै सलोक जी जंत कह जाग जी जंत के ठाकरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपति आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जातिस पावे ता श्रेष्ठ उपाय आपने पाने लय समाये कुमते पिन नहीं किच होए आपन सू सब जगत करोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोए जन पाए सो समलसी तत्का बेता नानक सगल सृष्ट का देता जी जंत सब ताके हाथ
दीन दयाल नाथ को नाथ, जिस रा कह तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस तज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जा के सभात, अंतर बाहर जानो साथ, पुण्य दान बेअंत व्यापार, नानक दास दा बलहार, पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव जाने आप, अंतर जामे रहो बेआप, प्रतपाल है जी अनुभव बात, जो जो रचो तो तिसे त्याग, जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या, जन लागा अरे कहनाए, तिसकी आस न बिरथि जाए, सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर पे निर्वैर, अंधिन पूजे गुर के पैर, हे लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले, साथ संग मिल करो अनंग गुण गावो, पद ब्रह्मानंद राम नाम रत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का ये सुहाओ, आठ पहर पब देखो नेरा, मिटे ज्ञान विषय अंधेरा, सुनब जिसे देव साओ, मन इच्छे नानक फल पाओ, हालत पलत दोए ले सुवार, राम नाम अंतर उदार, पूरे गुर की पूरी दिख्या, जिस मन बसे तिस साथ परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाए, धूप दरद मनते पहु जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह ने वह केप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माए, नानक बहुर ना आवे जाए, तिस्ते दूर कहाँ को जाए, सब सिर उधरे राख नहारते आए, निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन हो वसु, चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार, सिर ऊपर टांडा गुरसूरा, नानक ताके कार्य पूरा, मत पूरी अमृता के दृष्ट, दर्शन पे कट उदरत शिष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रदान, अंतर जामे पुरख प्रदान, जिस मन बसे सो होत निहाल, ताके निकट ना आवे काल, अमर पाए हमरा पद पाया, साथ संग नानक हर त्याय, श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रकाश, संत संग अंतर प्रभ दीखा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक कसकट माए, अनेक रंग नाना दिस्ताए, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सोन समाध अनहत तैनात, कहना जाइए तत् बिस्माद, तिन देख्या जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अंत, कट कट ब्याप रिया भगवंत, तरण माहे आकाश प्याल, सर्वलोक पूरन प्रतपाल, बंतन पर्वत है पार, ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म, पौन पानी बैसन कर्माए, चार कुंड तै दिस समाए, तिस्ते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, भेद प्राण सुमृत में देख, सस्य सूर नक्षत्र में एक, बाणी प्रभ की सबको बोले, आप डोल न कम हूं डोले, सर्व कला कर खेल है खेल, मोल न पाइए गुणे अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, आर्यो स्वामी योत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में हो विश्वास, संत जना का पिखन सब प्रम, संत जना कह हृदय सब तरम, संत सना संत जना सुने सुब बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस की ए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होय सोय सुख माने, करण करावन प्रभ, करण करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पस, जिस पावेता करे विस्तार, जिस पावेता एक कंकार, अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आपा भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक ते जना बुझाए, सर्व भूता पर तारा, सर्व नैना पे खनहारा, सगल समग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सबके मत अलुप्त हो रहे, जो किच कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तलय समाए, इस्ते पिन इस्ते होय सुना ही बुरा, उरै कोहो हो किन किच करा, आपला कतू तत्नी की, आपे जाने अपने जी की,
आप सातारी सब साथ ओत पोत आपन संग्रात नाकी गत मित कहीं न जाए दूसर होए तस हो जी पाए इसका किया सब प्रवान गुरप्रसाद नानक के जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय तुर सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकत जिस हृदय पदवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जनामन का यह स्वभाव जन के संचिता वे नाव आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक साथ साथ सिमरो वो बिंद मन अंतर की उतरे चिंत आस अनित त्याग हो तरंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सात सगन अगन सागर तरो हरतन के पर ले हो पंडार नानक कर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पद परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवहो नारायण एक एक रूप नाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है दार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल हे रतन सुनत का मावत होत उदार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महत के माते नानक उदरे तिन के साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पय सबरे अमृत नाम सा संग लैन सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हुए सेवक की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभही खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत साधवान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सुहोत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रगट सब लोए सबते उच पाए स्थान बौरना हो वह आमन जान हर तन का हार चले जन सोए नानक तिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वते थिद विद्या तप जो प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश जहाँ कै सब कै मस गलते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता हे फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने ए हो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बकाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपाते जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रपाए सास रंग नानक ते आए

हमारे निर्मल शोभा अमृता की बाणी एक नाम मनमाय समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के करम सबते उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सबते उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

सुरत होवै मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की सुध मन्ने मोह चोटा न खाए मन्ने जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पात सिम प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

ज्ञान। जे को कह करै विचार, करते कह करणै नाही समार। तौल धर्म दया का भूत, संतोख थाप रखिया जन सूत। जे को बुझै होवै सचियार,

अंत कारण किते बिल लाहे ताकि अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिबी उच्चा थाओ ऊचे ऊपर ऊचा नाओ।

आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मन जन सेव किते आखे आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे इते किते होर करे तय आखर सकै केई के जीवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्व संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी सिउ कही है केते राग परी सिउ कहियन केते गावन हारे गावे तोहनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इदासन बैठे देवतियां दरनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग

चाई रंगी रंगी पाती कर कर जनसी माया जिन्ने उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह हो साह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विपू।

आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सोए का बार कर कर वेख सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

जोरन सुरति ज्ञान विचार जोरन युक्ति छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुति थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जीए जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत

मंद कितिया खाणी कितिया बाणी किते पात नरेंद कितिया सुरती सेवक किते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोट आनंद श्रम खंड की बाणी रूप तथा घाटत घड़िया बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहे जेको कह पिछे पछताए तथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तथा घड़िया सुरा सदा की सुध

असाम्ब है, अगाम है, अजाम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमान्ये समस्ते निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाथे समस्ति विभूते, कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम बिरदे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता पेकी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे।

मानने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो अर्ध अर्धं अगं उगहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्तामं पीराजोर चाचरी शांत जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात शांत अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ते निदाने नमस्तमंग नरनाथे नमस्तमंग परमाथे नमस्तमंग अगंजे नमस्तमंग अपंजे नमस्तमंग अकाले नमस्तमंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वरूपोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृसं नमो सर्वरंगे त्रिपंगीय अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समसंग प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी चिरपट शांत द्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगे अचल राजी अटल साजी अखल धर्म अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रू आल शांत द्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक

है। एक मूर्त अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक देव पेव न जानहि जे वेद और कतेब। रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब, तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन, चक्र बक्र फिर चत्र चक मानहि प्रतीन। लोक चौदह के बिखे जग जापई जे जाप, आद देव अनाद मूर्त थाप्यो समय जे थाप, परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार। सर्व विश्व रच्यो स्वम पव गण पंजन हार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश, धर्म धाम सुपरम रहत अभूत अलख अपेश। अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम। आप रूप अमीकानुस्तते पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत, अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार। सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार, सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख, सर्व शास्त्र न जानहि जे रूप रंग अर रेख। परम वेद प्राण जा कह नेत पाखत नित, कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवहि वचित, मधुपार छंद त्वय प्रसाद। गुण गण उदार, महिमा अपार, आसन अभंग उपमा।

गत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय काम आत दुत प्रचांड मित गत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रनाट्य अनडंड बाड्य चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भियंग प्रयात छंद चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी छांद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिश अदिश अदृश्य अग्रश भगवती छांद त्व प्रसाद कथते के आशिज दिश है क्या भिज पिश है क्या अगंज कर्म है क्या पंज परम है क्या भिज लोक है क्या आदित सुख है क्या अवतूत वर्ण है के विभूत करण है के राजन प्रभा है के तरमंग तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है के जगतंग कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि क्या अधीन है कि रोजी रिजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है कि गैबल गैब है कि अपबल गुनाह है कि साहान साह है कि कारण कुनिंद है कि रोज देहांत है कि राज करीम है कि कर्म करीम है कि सर्वंकली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौन है कि सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परमंख वहीं मैं के अकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलाम है सलीखत बदाम है गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रजुल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है पर भुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तो सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गिंग त्रिबादे अगंजे अगाधे सुपंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है शिज है शूत है नकि नरकिंग प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रभा है सजैवंग सदा है विपुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विपुगत प्रभा है अन उगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है।

सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंपराणं सर्वंतराणं सर्वंकर्मं सर्वंतर्मं सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्तार सावलचंद्रा प्रसाद नमो नृकनाशे स्तमंग प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपेन्द्र बाध विपूते अनंगे नामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न ताता है न माता है न जाता है न पाता है नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत।

रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो सात रूपे नमो आ नमो इंद्र इंद्रे अनादिंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अम अकामे एक श्री छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पिजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नरकामंग विभूते समस्त स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते अजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं

श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कबीर बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दर्शा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबो हो, आप हाथ रह मोहे बचावो हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर छानज करदा करिया, सब बैरन को आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई वरण त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उभरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तो जजू करियो रक्षा। राख लिहो मोय राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तमोह पुरी चतुर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत यशन उपजायो। आदंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सुवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, पले बरे की वीर पछानत। चिट्ठी दे कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब युद्ध करख करा करता रा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब या करख करता हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सवतार।

जल रूप चाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, गलभिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन कोशा करता। श्री अस्तोज जाप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख नत से व्याप्त कोई अड़ेल। सुने गोंग जो याहे सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन डर के रहे, हो जो या की एक बार चौपई को कहे चौपई। संबत सतरह है सहसपण जय, अर्ध सहसपन तीन कही जय, भाद्रव सुधी अष्टमी रव वारा।

सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा कलवक कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह तुठा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिसनु देह सोई जन पावे पावे ता सोजन देह जिसना होर करया क्या करह विचारिया एक भरम भूले फिरह दह दिस एक नाम लाल सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावे कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारियो कथ की करह कहानी कथ केरी कित द्वारे पाईए। तन मन धन सब सांप गुर का हुक्म मन्य पाई है हुक्म मन्यो गुरु के रा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत परम भुलाया। माया ता मोहनी तने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। एह कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरा नाले साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों चित लाईए ऐसा काम मूले ना कीचै जिते अंत पछोताईए। सतगुरु का उपदेश सुन तू वै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम गोचरा तेरे अंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है जीव जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण है। आखै ता वेखै सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया जीव जंत सब तुद उपाए एक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिस नवाब तुठा तन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल दराली चाला दराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्यो तिखी वालो निकी है तुमारग जाना गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समाणी कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाए तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए तिव चलै जिन्ना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावहे। जिसनों कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारा सुख पावहे कह नानक सच्चे साहेब ज्यो भावै तिव चलावहे। एह सोहिला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया एह तनकै मन वसिया जिन धुरों लिखिया आया। एक फिर है कनेरे करह गल्लां गल्ली किने न पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पुत होए से जिन्ना जिन्नी हर त्याया हर त्याया। पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित पवित संगत सबाइया। कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिन्नी मन वसाया कह नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया। कर्मी सहज न उपजाय बिन सहज सहसा न जाए नह जाए सहसा कित संयम रहे कर्म कुमाए सहसा जीव मलीन है कित संयम धोता जाए। मन तो वो शब्द लागो हरस्यो रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा उपजाए। जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिन जिन जुए हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मह नाम उत्तम सो सुनह नाही फिरह ज्यो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच सुमाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले से मन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे है गुरनाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहे गुरनाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा संभाले आप छाड सदा रहे परणै गुरबिन अवर न जाने कोई।
कह नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जेको गुर ते बेमुख हो वै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी परम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए।

गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करह रसना कहया कछु न जानी जित जिन काहिर लया माया बोलन पए रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ

शिव सकते आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन हो वै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे स्यों हो वै एकस स्यों लिवलाए।

जैसी अगन उधर मैं है तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जे ही करते खेल रचाया। जा तिस पाणा ता जम्मिया परवार भला पाया, लिव छुड़की।

जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो। हर तुम मह जोत तरी

0: شروع کے دے دو
1: پاٹو کو پورا
0: تان گور نام

0: पार। कोलू चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत। लाटू मां दानिया अनगाह पंखी पौंदियां लै नसा। सूए चढ़ पवाइए जंत नानक पौंदिया गणत नान।
1: मंदन मन पवाए सोए पै कृत नचे सब कोए। नच नच हसे चले सिरोए। उड़ ना जाई सिद ना होए। नचन कुदन मन का चाओ। नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ। पौड़ी ना उतरन का।

मुसलमाना सिर्फ सरयत पढ़ पढ़ कर विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हंदर्शन रूप पार तीर्थ ना वर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुनते अवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार सत्य अमन संतोख।

0: अन्न न खाया, साध गवाया, बहुत दुख पाया, दूजा पाया। वस्त्र न पहरे हिंस कहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता। पग उपे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई। विरनावे किस ताए न पाई, रह बेबाणी मणि मसाणी। अंध न जाने फिर पछताणी,
1: सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नदर करे सफाए, आस अंधे से तेने केवल। हाउ मैं शब्द जलाए, पौड़ी पग तेरे मन पावंदे।

0: लब पाप दोय राजा मेहता कूड़ होवा सिकदार कामनेव सद पुछिए बह बह करे विचार अंधी रहित ज्ञान विहुणी पहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे श्रृंगार ऊचे कूके वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वै मंगे मोख द्वार जति सदा वै जुगत न जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा पे हो वै घट न कोई आख पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे महला पहला
1: सुजगनान का सचा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर अगे जीवन में जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़े तुर करमजना को दुद पाया ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ

मछली चंद्रावल कौन कर संजादम भया पार जात गोपी लाया बिंद्रावन में रंग किया। कल मैं बेद थर्पण हुआ ना खुदाई अलह पया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानिया मल किया। चारे वेद हो इस चार पढ़े गुणे तीन चार विचार भाव भगत करनी सदाए तौरान मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विठू वारे।

रंग से रंग रोवे चुप पी कर जाए परवा नहीं किसे केरी बाज सच्चे नाय निर्वाटे ऊपर खर्च मंगा

दाते मेरा गुण अवगण ना विचार हो कोई, माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत यही। मेरे ये जियो मिट्टी अर्गा कच्ची कान दे तो वो गे ये तो मैल ही निकलनी है। साहब जी कहते ठीक है तेरा कहा मैं मन लिया है, पर हुण एक काम तू कर तेरी अरदास मंजूर हो। मेरे मन सतगुर सेव हो, तू उस वाहिगुरु अकाल पुरख के नाम नू जपना कर। जो तू ओदा नाम जपेगा जो इच्छ हो सोई फल पावो, दुख ना व्यापे कोई। सतगुरु जी ये मैनु पता है कि तुहाडे नाम नाल बच सकदा वां, इस वास्ते मैनु रख लो अपना नाम दे के देहो अपना नाम। धन गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी ने भी बड़ी निम्रता दे विच हरजू राख लिहो पत मेरी, वाहिगुरु जी कृपा करो जे मेरी पत मेरी इज्जत रख लियो जे। क्यों मैनू एक सोची हो गई है, जम को त्रास पयो और अंतर सरन गही कृपा नित तेरी। मैनू हुण दिसदा है कि जो मैं कीता है मेरा रस्ता जेड़ा ना वो तुहाडे घर दा नहीं होएगा, रस्ता मेरा जमदूत वाला होवेगा। हुण उन्हां दा डर सतांदा है भी किहो जी मार मैनू मारनगे। इस वास्ते हुण मैं तुहाडी शरण विच आ के डिग पिया, मैं चंगा नहीं हैगा। महापतत मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहार, मैं कला पतत ही नहीं हां महापतत हां। मैं मूर्ख नहीं हैगा, मूर्खां दा मूर्ख जो होवे वह मुग्ध हां। और पाप कर कर पता नहीं किन्ने कि मैं पाप जिहड़े आ वो कर दिते आ, अपनी जिंदगी दी पाली जिहड़ी मैं उन्हां पापां दे रही हार गया होया। पर हारिया होया तुहाडे दर ते डिगे तुसी रख लैंदे। महापतत मुग्ध लोभी करत पाप अबहारा, भै मरबे को बिसरत नाही तेह चिंता जन जारा। हुण जिहड़ा मौत दा डर है ना वो बहुत मेरे अंदर पै गया हो गया। हुण उस चिंता दे विच मेरे तन दे अंदर होर अग लगी, होर सड़ी जा रहा। जिहड़ा उपा करना सी मैं कीता नहीं गा, किए उपा मुक्त के कारण दह दस को उठताया। किसी ने कहता समेत जग कर ला, किसी ने कहता फराने तीर ते स्नान कर ला, वो सारे पासे भज्या, पर मेरा मन का टका जिहड़ा वह नहीं बनिया। मन फिर उस पाप दे विच उस विखे दे विच जिहड़ा यह सुनिया सी कि मेरा वाहिगुरु मेरे अंदर वसदा, घट ही भीतर वसे निरंजन तां को मरम ना पाया। नाहिन गुण नाहिन का चप तप, कौन कर्म अब कीजे। नानक हार परयो सरनागत अपै दान प्रभ दीजे, आप कृपा करो मैनू एहो जा दान दियो। ते सब तो उत्तम दान जेड़ा है तुहाडे घर दे विच दे विच सब कुछ है वो नाम है। दुनिया दे विच पैगंबर दे कोले मुअज्जा सीगा, वली कोल करामात सी, फकीर दे कुले मनावत सी, इधर रिधियां सिधियां रिशियां मुंगियां जड़े सीगे रिधियां सिधियां वाले सी। धन गुरु नानक साहब महाराज साहब टेक के बैठे हुए सी,
ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ

कर सांत सुख मन आए वस्यान सदा कुर्बान किता गुरु विट्ठों

शब्द बुझै सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसै मन आए।

माया मोह अंध अंधारा हमे मेरा पसरिया पसारा अन दिन जलत रहै दिन राती गुर बिन सांत ना होई हे आपे जोड़ विछोड़े आपे आपे थाप उथापे आपे सच्चा हुकम सच्चा पासारा होरन हुकम ना होई हे आपे लाए लाए सो लागै गुर प्रसादी जम का पौ भागै

मनमुख तात दूजे है लागा, जनमत की नामुओ अभागा। आवत जात बिरथा जन्म गवाया, बिन गुर मुक्त ना होई है।

है। पंच दूत काया संगार है, मरमर जम है, शब्द न विचार है, अंतर माया मोह गुबारा, ज्यो सुपन सुद न होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे, सात गुर आए मिलया वड पागे, अंतर साच रव है रंग राते, सहज समावै सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापै, पूरा सेवक शब्द सियापै,

न राती परम पेख परमाई है। एक ग्रहे कुटुंब मह सदा उदासी शब्द मुए हर नाम निवासी अन दिन सदा रहे रंग राते पै पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर वे कुत्ता अंतर लोभ भौंक जिस कुत्ता जमकाल तिस कदे न छोड़ अंत गया पशुताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई बिन नावै मुक्त न पावै कोई बिन सत गुर को नाउ न पाए प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी एक अहनिस नाम रते निरंकारी जिसनो आप मिलाए सो बूजै भगत पाए पौ जाई है। इस नान दान करे नहीं बूझे

जुग जुग साचा एको दाता पूरा भाग गुर शब्द पछाता शब्द मिले से विछुड़े नाही नदरी सहज मिलाई है हमें माया मैलक माया मर मर जम है दूजा पाया बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई मन देखो लिवलाई है।

दुर्मत खोटी खोट कमावै, सिगार करे पिर खसम ना पावै, गुणवंती सदा पिर रावै, सतगुर मेल मिलाई हे। आपे

सेवड भागी जिनी एको जाता घट घट वस रहया जग जीवन दाता। एक थै गुपत प्रगट है आपे गुरमुख ब्रह्म पौ जाई हे। गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता।

सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम निवासी है। हौ तिन बलहारी जो सच लागे हर गुण गावह आन दिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस रासी है।

दीजै। गुरमुख होवै सो पत पाए, इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन

अनल वाऊ परम पुलाई माया मोह सुध न काई मन मुख अंधे किशु न सूझै गुरमत नाम प्रगासी हे। मन मुख हो मैं माया सूते अपना घर न संभाल है अंत वे

जो सच लागे तिन साची सोए, दूजे लागे मन मुख रोए। दोहा सिरिया का खसम है आपे, आपे गुण मह पीजै हे। गुर कै शब्द सदा जन सोहै, नाम रसायण एहो मन मोहै। माया मोह मैल पतंग न लागै, गुरमति हर नाम पीजै हे।

सुख पाया नाए साचय अमृत पीजै हे। किल बिख दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा। सब किश आपे आप वरतै गुरमुख तन म

जम का पौ पावै है, जम ना छोड़ है बहु कर्म कमावै है। सतगुर भेट ता मुकत पाई, हर हर रसना पीजै हे। मनमुख अंतर भगत ना होई, गुरमुख भगत सांत सुख होई। पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पीजै हे। ब्रह्मा बिसन महेश विचारी, त्रै गुण बदक

सच्चो सच्चा सच सालाही एको वेखा दूजा नाही गुरमत ऊचो ऊची पौड़ी ज्ञान रतन हो मैं मारी हे माया मोह शब्द जलाया सच मन वसया जा तुद पाया सच्चे की सब सच्ची करणी हों मैं तिखा निवारी हे माया मोह सब आपे कीना गुरमुख वरलै कि नहीं चीना गुरमुख हो

उपाय उपन्ना सब मैं वरत एक परशन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय सिर सिर धंधाय आपे लाए जिस भाव तिस आपे मेले जिन गुरमुख एको जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित बिकारा थेर साचा सा लाही साधही जिन गुर का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओने सुख पाया।

है। हम गुण नाही क्या बोल है बोल, तू सबना देख है तो लै तोल, ज्यों पावै त्यों राख।

छोड़ गुण माहे समाए, गुण में एको निर्मल साचा, गुर कै शब्द पछताहे। जह देखा तै एको सोई, दूजी दुर्मत सब देखोई, एक समय प्रभ एक समाना, अपने रंग सद राता है। काया कमल है कुमलाना, मन मुख शब्द न बुझे याना, गुर प्रसादी काया खोजे, पाए जग जीवन दाता है।

साला है, जुग जुग एको जाता है। मन मुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाए। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेव

अशांति मूर्ख अंध घोर। एक ओंकार एक ओंकार सतनाम करता निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी

संत सूर मोह भक्ता।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वत्या कमाए संख पापी पाप असंख मूड़े आल करे संख मलेच मल पाए असंख निंदक।

ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਭਗਤ ਕਵਣ ਕਵਣ।

0: पे जाए ए साला ही साला है इतनी नदियां पे बाहर पा तुम न जान समुद्र सा करता गिरी कुल नामे
1: अंत न सुनी कह नान अंत न करना है नान अंत न देखन सुन न अंत

जाने श्याम भाई आपे जाने।

निष्काप निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोच न हो गई।

संत पूर्ण मोक्ष का

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वत्या कमाए संत पापी पाप असंत मूड़े आर करे पुराए संत मलेच माल पाए असंत निंदक करे पाप नानक नीच कह क्या बारे न जाना के जो तुम पावे सही परिकार सदा सदा मत संत नाम राम राम संत दो असंत कहें।

ਨਦੀਆਂ ਹੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਨਾ ਜਾਣ।

पाताल विश्वित धरती सावधी धर्म कर्मी कर्मी सोहन पंच प्रवान नगरी कर्म सवैन कट खाई उत्थ

जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई

साहब कले कर जो जी जात गंगा के ना सब नाल के अमरी सब एवले काल के जाने कोए काल के ना होए के तान सुनले और रोज

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वटक माए अशांत पापी पाप अशांत मूड़ यार करे सुधाए अशांत मलेश मार पाक खाए अशांत निंदक करे पास नानक नीच कहे क्या मारे न जावा के जो सुख पावे सही परिकार सदा सलाम भजन संत नाम राम राम।

0: आपे पीर आपे खा
1: कवन सुनेगा भगत कवन कवन सिद्ध कवन कवन सृष्टि मां।

समुद्र सासुता अंत न सुखी कहना अंत न करना देना अंत न देखना सुनना।

सोदर तेरा सो करके सर्व

कैसा जिसा जो कर देखे सोए नानक तुम राती रुती फिरती का पौन पानी अगी पाता तिस विच धरती थावती।

ਨਾਨਕ ਅੰਤ

जब आद सच जुगाद सच है भी सच ना।

हर कले कर दो जी जात रंगा के ना सब नाल के अमरी सब है ओले नाल के गाने होए ये तान सुना ले।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर करता है अशांत काल वह संत पापी पाप अशांत मूर्ख अशांत मलेच मल पाप है अशांत निंदा।

अब जाए ऐसा लागी खाला है नदियाँ अपने बाहर पासों न जान समुद्र साधता अंत न सुनी कहना अंत न करना देना अंत न देखना।

ਬੋਲ ਬਿਗਾੜ ਲਿਖੇ ਫਿਰ ਗਵਾ ਲੰਗਾ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਸੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈ

गावे पंडित ब्रह्म कीर्तन दूध वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन दुर्गा मच प्रयाले गावन रतन पाए तेरे अक्षत तीरथ नाले गावे जोर महंत सुधा गावे

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कालवड हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे संत मलेच मल पाए असंत निंद

ਕਰਮ ਖੰਡ ਕਾ

निरंकुश निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंधोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हृदय कमाए शांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिर संत मलेच माल पाए अशांत निंदक

आकाणी ब्रह्मा सत्वांतरम कमल सुरेला भक्त कमल कमल क्षेत्र कमला

ਸੁਣੀ ਨਾਨਕ

निरंकार निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिराए अशांत मलेच मार पाक खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे मारे आना जामा के जो तुम पावे सही फलिका।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਤ ਸੁਹਾਗ

अंत न सुखी कहना अंत न करना देना अंत न देखना सुनना।

ਸਰਮਾ ਇਹ ਬੇਦਾਸ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਿਆ।

सोदर तेरा सो करके जित बै।

कैसे कैसे रत्न तुम हम कितनिया पानी कैसे पाप कितनिया सुखी नानक अंत

সর্বে মাত্র মানুষ কর্মখান্ডি পাণী

संत सूर्य मोह मक्का।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वड हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे फिर अशांत मलेच माल पाक खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे क्या मारे न जाम एक जो तुम पावे सही करिका सदा खुला मत निरंकार संत नाम गाँव गाँव संत

ਪਾਈਆ।

கொள்ளுங்கள்.

सच सच नहीं है पीरो।

ਨਾਨਕ ਅੰਤ

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे बुझाए अशांत मलेच मार पाक खाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे क्या मारे न जाना दे जो सुख पावे सही सही कर सदा सदा मत निरंकार संत नाम संत नाम राम राम।

ਕਮਣ ਸੁਣੇਗਾ ਭਗਤ ਕਮਣ।

ਨਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਜਾਣ

बंद खलासी पाने और आखन सके देखो फाटे आखन ओ जाने दुनिया नो आपे जाने आखे दे आखे दे दे हाथ सटो

परिश्रम कहियन कहते काम भरे गावे कहनो कौन पानी वह संकर गावे राजा धर्म सुवारे गावे।

ਕਰਮ ਖੰਡ ਦਾ

0: कैसे कैसे रत्न तुम हम कितिया सुनती नानक अंत न अंत
1: ज्ञान अंत में ज्ञान पर चन्न

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोच न हो गई।

Gurmukh Natan, Gurmukh Metan.

संत सूर मोह मत्ता।

असंत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत मूर आर संत मलेश मल पाए असंत निंदक कर नानक नीच कह मारे अमर जामा के जो सुख पावे सही सलीका सलामत संत नाम संत नाम राम नाम संत लो असंत कहें सिर्फ।

अमोल अमोल अमोल परमा।

ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਾ ਏ।

कृता निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਖੇਮਾ ਸਭ ਨਾਲ ਕਿਆ ਮੁੜੀ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰਹੋ।

संत सूर मोह पत्ता

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख बल वढ़ कमाए संख पापी पाप असंख कूड़े यार करे सुधाए संख मलेच माल पाए असंख निंदक करें।

ਆਪਣ ਪੀਰਿਆ ਬੇਖਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਮਣ ਸੁਣੇਗਾ ਭਗਤ ਕਮਣ ਕਮ

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई।

0: पावे भाई पलिका
1: संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कलवट हृदय कमाए संत पापी पाप असंत मूड़े आए संत मलेच माल पाए असंत

सोहन पंच प्रवान सदरी कर्म सवे कथा पाई उत पाए नानक गया कर्म खंड का एक।

कृता पुरुष निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी शैलम गुरु प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

संत सूर मोह।

अशांत मूर्ख अंधकोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए शांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे अशांत मलेच माल पाए अशांत निंदा

सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व प्रसाद की सर्व

ಶಿಲಕ ಕೇ ಮನಸ್ಸಿ ಕಥ.

साफ तरह सुंदर

ಜ್ಞಾನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಇವುಗಳ

संघ में जाए।

Yeah.

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ।

Salana, Gina, Mukaga, Father.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ

संत का निजम महाराई संत का निजम के टिकट न पाई संत।

0: दुखी को डाल लगे धन के दुखी को सब जगह
1: उनका दुखी महाकारी सबका दुखी सदाधिकारी
0: उनका दुखी जन्मा मरा धन की दूसरा धोखे
1: करके दुखी बना संसार
0: धन के दुखी को
1: संस्था दुखी
0: धन का दुखी दिल से टूटा धन का दुखी जिसे कारण पूछा
1: संत्य दुखी को संस्था दुखी पाई है
0: धन का दुखी अंतर से चौथा जो था बिना मृतक की जो था
1: दुखी धन
0: के दुखी को और लड़ाकर हार नारे धन को हरता ले बाहर
1: संस्था दुखी
0: धन का दुखी भूखा नहीं आ जाए जो जो पाव की
1: हम
0: का दुखी करते रहे तो हम का दुखी धन मिर्चा कह
1: हम
0: का दुखी धीरे दिन हो जाए हम के दुखी को धन क्या मिला के जाए
1: हम का दुखी है
0: हम के दुखी की पूजा आसान हम का दुखी चला मिला था

ಆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಸಹ

ज्ञान के समान प्रकार

Father.

0: ਸਭੀ ਹੋਣੀ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਏ

ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಿಂದ

ਸਭ ਸਤ ਤਿਸ ਪਾਤੇ ਸੰਗੀ ਉਤਪਾਤ।

सब सहाय उद्भूत प्रसाद।

ജീവിതം എന്ന് ആ

ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਪਣੀ

आपकी कर्म कर्मी कर्मी होए सोहन मन प्रवान सदरी कर्म सोवे कच्छ खाई उठे पाए नानक गया कर्म खंड का।

ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ।

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।